तेरे दर्शन को हम बारे। आप जी दी पवित्र बाणी विचों ए शब्द किवें अकाल पुरख तो सड़के जा रहे हो, किवें बलिहार जा रहे हो।

0: जैसे माँ कराची बाजार आई पड़े सन। मैं पूछा क्या लगे, बड़ी लंबी कथा माँ तनवान दी है।
1: हाँ सुन, हरनाक्ष नादा एक बड़ा शक्तिशाली राजा सी। उन्हें भगवान दी भक्ति करके एक वरदान लिया कि ना वो दिने मरेगा ना राती मरेगा, ना अंदर मरेगा ना बाहर मरेगा, ना मनुख कोलो ना किसी जानवर कोलो। भगवान का वरदान लेके वो आप ही भगवान बन बैठा। उस राजे का एक पुत्र सी प्रहलाद। प्रहलाद ने अपने पिता नु भगवान मनन तो इनकार कर दिता। क्रोध विच आ के पिता ने पुत्र नु तपते थम नाल जफी पान का हुक्म दिता। प्रहलाद के दिल विच आवाज आई, पाल तत्ते थमा नु जफिया आपे तेन रम रख लो। प्रहलाद ने थम नाल जफी पाली पर उदा वाल भी वेंगा ना होया। गुस्से विच आके राजा ने तलवार कट ली ते थम पाट गया।
0: मैं भी प्रहलाद बनांगी मां, भगवान दा जाप करांगी।
2: मेरी मेहनत विच मेरी औलाद पुठे पार पड़े जा रहे। अज तो बात फिर करी ऐसी गल की थी तो मैं ऐसी सलाह दिया कि लोग हैरना किस्म भी भुल जाएंगे।

उस वह करके अरसात समुद्र की मत कहो, काट वनस्पति सगरी दिख बहु के लेखन काज बने हो। सार सुता पकता करके जब कोट गणेश के हाथ रखे हो, काल कृपा ना बिनती बेसुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत न कूट बराद हमारे अनक विधि समझाओ, अनक विधि समझाओ। हम अज्ञान अलप मत थोरी तुम आ

दमन तू संसार ते जा। कहंदे ने मेरा मन नहीं करदा तेरे चरणा तो, पर हुक्म भी मनना है। पर बार बार कह रहे ने मेरा दिल नहीं करदा किसी होर दी ड्यूटी लाओ। प्यार नाल सत्कार नाल किसी जोर जबरदस्ती नाल नहीं, थापड़े दे दे के जिवें प्यो पुत्र नूं समझांदे बच्चे नूं आखदे ते मेरे पातशाह जी दे की वाक हन, आप फरमांदे हन आओ चलिए श्री हेमकुंड साहब जिथे मेरे कलगीधर पातशाह जी परमात्मा निरंकार नूं जवाब दे रहे ते की आखदे।

गुरु के सिखो। ओ मेरे दुष्ट दमन पिता साहिब कलगीधर पातशाह निरंकार दे चरणा नाल जुड़े हैं, आपां भी थोड़ा समा मेरे पातशाह दे चरणा नाल जुड़ के इस शब्द नू श्रवण कीजिए। मैनू याद है कैलगरी विखे ये शब्द दास पढ़ रहा सी, आ गोरे सिख जिन्हां ते पातशाह दी बहुत मेहर है, बहुत कृपा है, आ नवे सिख सज रहे, भावे ओनू समझ नहीं सी आ रही, सुन रहा सी। बीबी सी उसने उठ के कहा, भावे मैनू अर्थ समझ विच नहीं आए पर मेरा मन कलगीधर पातशाह गुरु गोविंद सिंह साहिब जी दे चरणा नाल जुड़ गया। उन्हें आख्या, मैं नितनेम नाल इस नू टेप ते सुन दी हां और बड़ा ही मैं जिवें एक शब्द सुन के हेमकुंड साहिब ते पहुंच जानी हां। तो गुरु की साध संगत आओ आपां वी उसे ध्यान नाल जिस ध्यान नाल कलगीधर पातशाह जुड़े बैठे ने, आपां भी कुछ समय लई

मैं बंदा बेखरीद सच्चा मेरा मैं बंदा बेखरीद सच्चा मेरा जो पिंड सतिसा सब कुछ है तेरा माने ने माने तू तने तेरा परवासा बिन साचे अंतिक है तो जानू काचा।

कड़बाहिर तेरा प्रवक्ता, तू जन के है संग, कर कृपा प्रीतम प्रभु अपने, नाम जपो हर रंग, जन को प्रभु अपने का प्राण, जन को प्रभु अपने का प्राण जो

हम अनाथ ना थकन अपनी कृपा करे चम चमन नानक आरा दे किस दिन आम की पर परमेश्वर गत नारायण तन गोपाल गुण साखी।

हम जाएंगे और तुम ते लेना तू मेरा देना जो तू दे सोई सुख सहना जो तू दे सोई सुख सहना।

मध्यन होत साधु तुरे आवण जानू रेखित पाई जन मरण के मिटे वसूरे गुरु नारायण दुर गुर सच्चा सिद्धन हार गुर तुठे सब कुछ पाया जन मानस सब बनिहार हर गुण गाओ।

संसार दा आना जाना तो बने पर इस आउन तो बाद जान दे समय नवेड़ा सच ते होना है। सदा रहने वाले वाहिगुरु अकाल पुरख असी रोज पढ़ने कूड़ राजा कूड़ परजा कूड़ सब संसार क्योंकि रहना जो नहीं जेड़ा आज है कल नहीं होगा जो आज तो 100-200 वरे पहला सी ओदे बारे पढ़ते सुनते हैं कदे यकीन आउंदा कदे नहीं आउंदा और बहुत कुछ ऐसा भी है जिदे बारे लिखिया भी नहीं गया असी कुछ सुनते भी नहीं कुछ कह भी नहीं सकते बहुत कुछ संसार ते ऐसा ही होया जिदी कोई निशानी बाकी नहीं है जिदी निशानी भी कोई नहीं जिक्र भी कोई नहीं उन्हूं सच कवे कहोगे और होर चार दिनां नूं जिहड़ियां निशानियां साडे कोल पिछले इतिहास दीआं कायम ने हो सकदा है ना रहण आउण वाला युग जिस वेले असी गल्लां करिए कहण इह झूठ है इह मन्नण विच नहीं आउंदा जो कल सी अज झूठ हो गया जो अज है कल झूठ हो जाएगा ओदे बारे धन गुरु नानक कहिंदे ने कूड़ राजा कूड़ परजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ पैसन हार कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहनन हार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूप अपार कूड़ मियां कूड़ बीबी खप होए खार कूड़ कूड़े नेह लगा विसरिया करदार गलत हो गया काम कूड़ नाल मोह पा लिया कूड़ नाल नेह पा लिया जो रहन वाला सच सी ओदी संभाल ना कीती ओनू चेते ना कीता विसरिया करदार महाराज सचेत कराउंदे ने किस नाल की चाहे दोस्ती जो तुर गया ओदे नाल दोस्ती कि जो रहना है जो है मौजूद है जिसने अगे भी रहना ओदे नाल प्यार के जो तुर गया ओदे नाल प्यार जो छड़ गया ओदे नाल प्यार अज एक छड़ गया और जो छड़ गया है ना एक इशारा कुछ संकेत दे गया एक महापुरुष ने बड़ी प्यारी गल कही वो कहिंदा हर बच्चा जो माता दे गर्भ तो जन्म लैंदा है एक सूचना लैके पैदा हुंदा है कि मैं मरन वास्ते आया वरे गंढां बीतदियां जांदियां ने दिन बीतदे जांदे ने बच्चा वड्डा हो रहा है लेकिन कबीर जी कहिंदे ने दूजे पासों भी गिणदा उधरों भी वेख लै जननी जानत सुत वड्डा होता मां कहिंदी पुत्र वड्डा हो रहा है पर कबीर दीआं अखां होर पासों वेखदियां ओ कहिंदे ने इतना को ना जाने जे दिन दिन औध घटत है ये तो जिंदगी घट रही है जितनी आयु लिखा के लिया ओ जेड़ी ए उमरां असीं गिण रहे हां वड्डे होण दी ओनी घट गई।

कर शब्द विचार गुरु कर रे मन मेरे गुरु कर शब्द सुपन अघन करते सब तेरे।

सतगुरु कहिंदे ने देह सदा नहीं रहनी। जिंदगी विच कोई ऐसा कम कर जा के लोग तैनू याद करन, भाई वाह फलाना तां इदां दा सी, बड़ा चंगा सी।

ज्ञाने की बढ़नी मनो हाथ ले। शत्रु कहंदे ने ज्ञान दा झाड़ू मन दे हाथ विच पकड़ लै ते अपने अंदरों ईरखा द्वैत चुगली निंदा बखीली ए सारी हूंज के बाहर कढ़ दे ताके तेरे हिरदे च टिक जावे सतनाम श्री वाहेगुरु।

इस बुढ़ी मां दा सहारा छोटा जिहा पुत्र मालक दा पाणा वरत्या। दुखां ने सुमाता नूं

अपने पुत्र दे प्यार विच व्याकुल होई, महापुरुषां दे दर ते पुजी, अपने पुत्र नूं सामने रखिया।

चाहिदा है तेनू तेरा पति परमेश्वर मिलिया है, रोना मैनू चाहिदा है जिनू अजे पति परमेश्वर मेरा मालक ओ प्रभु नहीं मिलिया। मालक रहमत करे मैनू भी मेरा पति।

कहीं बनिया बैठकर तिजोरी भर रहा है, वो अपने आनंद में बैठा है, मौज कर रहा है। कहीं अफीम की अफीम खा के अपने आनंद में बैठा है। बाबा जी कहते हैं सबको अपना अपना रंग प्यारा लगता है। हजूर कहते हैं।

भूखे शेर को मांस मिल जाए, झपट पड़ता है। इसी तरह गुरु प्यारों को सत्संगत का आनंद मिले तो भागे हुए आते हैं। भूख है ना अंदर, शेर को मांस की भूख है, बहादुर को लड़ने की भूख है। बाबा जी कहते हैं कंजूस को पैसे की भूख है, वो जमा करता ही जाता है, चाहे बेटा ना हो औलाद ना ही हो, फिर भी उसे कंजूसी की आदत पड़ी। बाबा जी कहते हैं ऐसा ही भगवान के भक्तों को इस संगत का प्यार रंग, जहाँ जहाँ पर प्रभु ने लगा दिया वो वहीं लगे।

कतहु सुचेत होय के चेतना को चार किया, कतहु अचिंत होय के सोवत अचेत हो। साहेब गुरु गोविंद सिंह साहेब जी बहुत प्यारी रचना अकाल उस्तत विच फरमान दी, कतहु सुचेत होय के चेतना को चार कियो, कतहु अचिंत होय के सोवत अचेत हो।

आओ भाई आज दे दिन अरदास करिए। पातशाह साडे हिरदे विचों नफरत दी आंधी जो चलदी है उस नूं मिटा। बख्शिश कीती सी आप जी ने भाई कन्हैये उत्ते जिस वेले उसने दुश्मन नूं दुश्मन ना समझिया ते फिर तू सिख हो के सिख नाल नफरत करें गल बनेगी। कदी भी खून नाल खून नहीं तुलदा पानी पाया ही खून तुलदे। नफरत नाल कदी नफरत खत्म नहीं होई ओदे उते प्यार दा पाना पानी पाना पएगा। साच कहूं सुन लेहो सबै जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभ पाए। बाबा गुरमुख सिंह जी एक गल आखदे हुंदे ने तुसी किसे दे घर चले जाओ तुसी उन्हां नूं कहो मैनूं प्यार दियो कोई नहीं देगा। पर जे तुसी खड़ के कह दियो आओ लोको मैं तुहानूं प्यार दियां हजारां लोग तुहाडे कोल आउणगे। ये पहल तू करनी है। प्यार असां देना है लैणा नहीं। देवे तां ठीक है पर असीं कहिंदे आ इहने फतेह नहीं बुलाई असीं क्यों बुलाइए। ना भाई ओह नहीं बुलांदा तूं बुला लै तूं प्यार कर तेरा फर्ज़ है। हंकार ते नफरत दी आंधी विच ऐ मेरे पातशाह जिवें तुसीं मलम ते पट्टी दे दित्ती सी ते मानो गाउंदा गाउंदा इही कुछ कह रिहा सी। भावें कोई मोमन वेख रिहा है भावें कोई पहाड़ी राजा है कोई हिंदू है कोई सिख है पानी मुंह विच देंदा होया इको ही पुकार है केड़ी

गायत्री को गुपत जप्यो, कहूं होय के तुरका पुकारे बांग देत हो, कहूं को कुकाब होय के पुराण को पढ़त मत, कतहूं

कहूं देवतान के दीवान में विराजमान, कहूं दानवान को गुमान मत देत हो, कहूं इंद्र राजा को मिलत इंद्र पदवी सी, कहूं इंद्र पदवी छिपाए छीन लेत हो।

लाख भगत जा को आराधे, लाख तपीस तपगी साधे, लाख जोगीश करते जोगा, लाख पोगीश्र भोगे भोग, तेरा अंत न पारा बाधिया, तेरा अंत न पारा

पौन साधना कते एक बात अरब के आर भी अराधे तेरू नाम है। फारसी फरंगी माने कलदारी कूड़ा सीधाने पश्चिम के पश्चिमी पहचाने निज काम गए मरहट्टा मंगेल तेरी मन सो तपस्या कर मरहट्टा मंगेल तेरी मन सो तपस्या कर।

रंग के फरंगाबाद, बंग के बंगाली, फरंग के फरंगाबाद, दिल्ली के दिलवाली, तेरी आज्ञा में चलते तेरा अंत न पारावार या। रो के रुगेले मग देश के मंगेले भी बंगसी बंगेले पाप पुंज को मालित है गोखा गुन गावे गोखा गुन गावे गुन गावे।

தள்ளி விடுவது. धरती से ज्यों ज्यों संकट आए, जिन्ना के संकट उन्नी की शक्ति निरंकार ने दे के भेजना अवतार उन्नी की शक्ति समा होया ते मच्छ अवतार आया, समा होया ते कच्छ अवतार आया, समा होया ते नरसिंह अवतार आया, समा होया सोलह कला जिनी शक्ति लोड़। पहली विशेषता ही कि समा एहोजा जो बनया कल युग बिच निरंकार ने फिर आप आना किया है गुरु नानक के रूप जिते। पहली विशेषता ही बाकी अवतार ज्यों जिवें आए तिवें तिवें ड्यूटी देके जांदे रहे। ये पहली विशेषता ही गुरु प्यारे गुरु नानक प्यारी आख सतना। दसवें जामे तो बाद फिर शब्द रूप विच सदा लई धरती ते टिकदे दुनिया दे बेड़े बने लांदे। जिदन तुहाडी अख खुलेगी उदन पता लगेगा कि इस शब्द रूप विच ग्रंथ साहब गुरबाणी का जिन्होंने बहुत आसरा लिया। इस बाणी ने पता नहीं किन्या कानून ब्रह्म ज्ञान की अवस्था च भेजा है। इस बाणी ने पता नहीं किन्या नूं अनुभवी प्रकाश इसकी प्राप्ति हुई है। ये बाबा हरनाम सिंह पुछो मंडी आले रसना ते इन्नी ताकत आ गई जो कहना सो सत। इसकी शुरुआत कितों हुई, बैटरी कितों चार्ज हुई, दरबार साहब की परिक्रमा विच छोटी उम्रे 7.5 लाख पाठ जपजी साहब जी दे गुरु ने सेवा ली।